0: Buy a network, buy one, gift one free offer. Ma, 3 महिना को 125 Mbps internet. 2700 में खरीद कर दा. Free internet package. नया चरण को लागी gift करने मौका. सफल referral ma, आप लोग लागी 1 महिना free internet. Buy a net. अब सबै connected.
1: मध्य पश्चिम जान चेक. यति बेला बिहानको 10 बजेको छ.

0: पवित्र मेडिकल हल हुलाक रोड ग्वाई दांग फोन नंबर 082561419 मोबाइल नंबर 98478829943 र 98449146653
1: सूर्य को विकिरण बढ़ते आंखा कमजोर होते ग्लोबल वार्मिंग आंखा में रोग अरु थुप्रे समस्या तर समाधान पशुपति आई केयर सेंटर में विज्ञ आंखा का डाक्टर संगे आंखा चेक करने अत्याधुनिक उपकरण हम आंखा सुरक्षा दिने उच्च क्वालिटी का पावर ग्लास र फ्रेम उपलब्ध छ अब ढुक्क हुनुहोस् पशुपति आई केयर सेंटर ले तपाईको आंखा को रक्षा करने पशुपति आई केयर सेंटर कपासी दान संपर्क नंबर 98340008804 98340008804www.pasupatiicare.com

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5584954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर पैक क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

वायरनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: वोट खोट हमने निकाला है, वोट वोट में घोटाला है, वोट हमने जोश निकाला है, नोट हमने जोड़ा संभाला है,
1: उसके मुंह में मेरा निवाला है।
2: हर निवाले का पैरों के छाले का छाले के कलर को डालने का होगा
1: होगा।

0: 94.4 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: रिभर्स ओसमोसिस तथा यूबी स्टेरिलाइज्ड एन्ड ओजोनाइज्ड प्रविधिबाट प्रस्तुत राप्ती अञ्चलकै पहिलो ड्रिंकिङ वाटर
2: स्वर्गद्वारी ड्रिंकिंग वाटर।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: 1 लिटर र 20 लिटर जारको व्यवस्था।
1: अर्डर अनुसार खाली बोतलको उत्पादन।
2: 20 लिटर जारमा होम डेलिभरी सेवा।
1: सम्पर्क स्वर्गद्वारी ड्रिंकिंग वाटर, पुरानो बस पार्क, प्रोप्राइटर धर्मेन्द्र केसी। फोन नम्बर 082-5670-21 र होटल दाङगाली नजिक जीवन चौधरी। मोबाइल नम्बर 98478-63-375।
2: शुद्ध पानी पिउनुहोस्, स्वस्थ जीवन जिउनुहोस्। विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू अब दाङ मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक घोराईमा।
3: विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू
2: वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णहरि सुवेदीद्वारा दैनिक बच्चा सम्बन्धी सम्पूर्ण चेकजाँच तथा उपचार सेवा।
3: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुपमा शर्माद्वारा दैनिक चेकजाँच तथा उपचार सेवा।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी त हैन अड्गुरी।

प्रतिभासन सकूने से तेकोलागी शनिवार सी पांच आठ आठ सी सौन्न को टेलीफोन नंबर डायल करे उदिक संबंधी कार्यक्रम को शुभारंभ कर निके नीठो सांगीतिक आवाज बाट

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिक महिला विद्यार्थी वा अपाङ्गता हुँदा व्यक्तिको नक्ला छुट्टागिलाका आरक्षित सीट तथा भाड़ा छूटका प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए राखल। नियम पालना निहुलक जनगुनासो भरल पास प्रशासन से कड़ा कदम चल्लक हो। नेपाल सरकारका नियम अनुसार सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक महिला तथा अपाङ्गता हुँदा व्यक्तिको नक्ला अनिवार्य सीट आरक्षण तथा ज्येष्ठ नागरिक विद्यार्थी तथा अपाङ्गता हुँदा व्यक्ति भैलको नक्ला भाड़ा सहुलियत दिए पर्ना व्यवस्था बा। तर जिल्लामा संचालित कौनो सवारी साधनको यी नियमको व्यवस्था कर्तिरलक पागिलक प्रशासनको काही बाटिन। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा फुनद्वारा हस्ताक्षरित सूचना अनुसार यसै अगाडि सरकारवाला हुकनक्से घरिघरि बैठक बैसकन नियम पालना गर आग्रह गर्गिलसेफे व्यवहारमा सुधार निदेखिलक उल्लेख बा। नियमको पूर्ण पालना निहुबेर अलक्षित वर्गसे शास्ति भुक्ति पर्लक कति प्रशासनसे आपको दिनमा यहाँ कडाईका साथ अनुगमन गर्न स्पष्ट पार राखल। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यी सूचना मार्फत सक्कु यातायात व्यवसायी ओ चालक सहचालक हुनकला राज्यसे तोकलक सहुलियत ओ आरक्षणका व्यवस्था अक्षरश पालना गर अन्तिम चेतावनी समेत दिए राखल। नियम उल्लंघन करलक पागिलसे कानून बमोजिम कार्यवाही कर्जिना समेत प्रशासनको संकेत बा। गुड़िया बनाई शिखल पास तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सात निवासी टीका कुमारी सार्की से दैनिकी जो फेरल बाटिन। पहिलो चुलो चौका मकिल सीमित रलक वहां शिखल पास दैनिकी फेरलिक हो। वस्तक तुलसीपुर छक मीना लामी छाने फेप अखीज अचार बनीनाम व्यस्त बाटी घर में उत्पादन हुईलक लसुन पिपर बोड़ी लगायत का अचार बनाकर बेचना करथे। वहां अखी उद्यमी जोरगिल बाटी अखी तुलसीपुर का महिलाओं को ईसे जो आय आर्जन में जोरगिल बाट सेवा प्रतिष्ठान दांग का आयोजना तथा सामाजिक विकास डिवीजन कार्यालय तुलसीपुर का आर्थिक सहयोग में 15 दिन अचार उत्पादन तथा गुड़िया निर्माण तालीम शिखल पास महिलाओं को स्वरोजगार मार्फत आमदानी में जोरगिल खुट। तुलसीपुर 6, 7 और 9 वड़ा का महिलाओं को नक्ला तालीम देगी रह ज्याकर में 25 जना अचार बनी 47 जना गुड़िया बनीना तालीम देकर महिलाको नक्ला हाल आय आर्जन में जोरगिलक सामाजिक विकास डिवीजन कार्यालय तुलसीपुर का प्रमुख गिरिराज पांडे बतवा रखल। बजारमा व्याप्त अनियमितता कृत्रिम मूल्य वृद्धि व उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न उद्देश्यले सरकारले आशय देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्दिबा। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा मूल्य पारदर्शिता सप्ताह आयोजना गरिगिलक हो। बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप रोक सप्ताहव्यापी अभियानले कोसे ढुङ्गाको काम गर्न विश्वास सरकारले राखल। सक्कु सरकारवाला निकाय नागरिक समाज व संचारकर्मी अभियानमा सक्रिय सहयोग गर ओ बजारमा हुना अनियमितताको खबरदारी गर समेत सरकारले आग्रह गरिराखल। यी अभियान ऐना जेठ 3 गतेसम्म चल्ने बा। अभियान अन्तर्गत हरेक पालिकाले आफ्न क्षेत्रभित्रको वस्तु तथा सेवा प्रदायकको कनकला अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची धर आह्वान गर्नेबाट मूल्य सूचीको पालना हुइलक निहुइलक बारे पालिकाले जो नियमित अनुगमन गर्न जिम्मेवारी पारखल। उस्तक जिल्ला प्रशासन कार्यालय हन जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समिति हन सक्रिय बनेटी मूल्य पारदर्शिता लाग व्यापक प्रचार प्रसार करना ओ नियमन सुनिश्चित करना जिम्मेवारी देखिल्बा। सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन उपर प्रतिबन्ध लगिन सरकारको निर्णय तत्कालका कार्यान्वयन निकर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिराखल। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकार हन छलफलमा बोलिदिए अन्तरिम आदेश जारी गर्लक हो। सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न निर्णय गरल पास अनि राष्ट्रविक अध्यक्ष दीपक धामी सहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनसे रिट दायर गर्लक हुइट। दायर गर्लक रिटमा उपर प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन निकर कति अन्तरिम आदेश हुइपर्ना वा निपर्ना कना विषयमा छलफल गर दुनु पक्ष हन सिकागिल्बा। ओ निर्माण व्यवसायको नक्से बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित हुइपास केल ठेक्का आह्वान गर सरकारले माग गरलबाट। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले ऐन आर्थिक वर्षको बजेट कलाक अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम अग्लेन सुझाव बुझेची बिना तयारी आयोजना ठेक्कामा
लगिना पद्धति हटाई माग करलक हो। महासंघ अनुसार अखि ध्यूर ठेक्का अल्पत्र पर्लक मुख्य कारण जो स्रोत सुनिश्चित निकैकन ठेक्का लगागिल्ना एकठो कारण हो। महासंघ से मध्य पूर्व युद्ध का कारण डीजल ओ बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्री में हुलक अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि प्रति चिंता व्यक्त करती विशेष व्यवस्था का माग कई राखल। उसका निर्माण व्यवसाय हन मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू कैकन बजार में नगद प्रभाव बढ़ाई पर्ना सुझाव फे दिगिल बा। महासंघ से गरहूं उपकरण और निर्माण सामग्री में भन्सार सहूलियत दिएना पालिका से उठी ते अलग का कवाड़ी कर और सड़क कर बंद कर तथा राज्य से भुगतानी ढील हुई निषेगिल कर और मूल्य वृद्धि अभिवृद्धि कर भैट का ब्याज तथा जरिवाना मिनाह कर माग कई राखल। वस्तांग आर्थिक आर्थिक संगठन मध्यनजर करती कमती में तीन वर्ष कुलिंग पीरियड व्यवस्था कैकन कालो सूची का प्रावधान तत्काल हटिना ओ कृषि तथा जल विद्युत सरह निर्माण क्षेत्र में फे बैंक नक्से कमती में 15% लगानी कर पर्ना प्रस्ताव महासंघ से अगाड़ी सार राखल। हुईठा ताजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सकने बाटी अखसक खबर में शीर्ष समाचार कक्ष का सबको संग्रह संग

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: मध्य पश्चिम ट्रान्जेक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।
1: इनपी थुप्लु 4 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
2: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जीव दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
3: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-585-2110 थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चार देखि पश्चिम तर्फ।
4: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
5: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
6: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
5: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
7: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
7: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
7: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा, साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
4: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 082-585-2118।